0: जी सामीन, तो गीत आपने सुना और अब हम चलेंगे नशरियात के पहले कमर्शियल ब्रेक की जानिब। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि CVE कैसे काम करता है और इंसदाद दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलिया में कैसे नाफिज किया जाएगा SBS एग्जामिन्स की एक किस्त में। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: SBS South Asian plays

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS TV पर चैनल 30, SBS Wasteland या चैनल 30

0: इसको कैसे जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेटर ऑन हमारी जो जिसको कहते हैं AI आ रही है, दूसरा जो है उसमें यह है, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक अबाउट थिंग्स लाइक दैट, इट विल बी ऑल यू सी बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. सो नीड टू हैव अ बिट मोर मैथमेटिक्स इन स्कूल. हाँ, एक और चीज में स्लाइटली डिफरेंट अगर आप मैं बात करने लगा हूँ,
1: जरूर
0: वो ये
1: जरूर.
0: है कि अगर आप देखें कि सप्लाई चेन अगर आप देखें ना क्या हुआ इसमें जो वॉर में, कि इसमें वॉर अगर आप देखें कि प्रॉब्लम क्या हुआ सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया नीड टू लुक एट दिस वन, नॉट जस्ट लुकिंग एट सी सप्लाई चेन रूट्स और सोर्सेज, बट लुक एट

0: इंग्लैंड ने हैरी केन दे शानदार प्रदर्शन दी बदौलत क्रोएशिया नू हराया, जबकि पोर्चुगल नू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे खिलाफ निराशाजनक नतीजे दा सामना करना पिया। फीफा वर्ल्ड कप दे सत्तवें दिन दीआं मुख सरगर्मियां दे नाल विश्व कप डेली अपडेट विच तुहाडा स्वागत है। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर ते पेश है फीफा 2026 दे सत्तवें दिन दा स्पोर्ट्स रैप। इंग्लैंड ने अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत शानदार ढंग नाल कीती अते क्रोएशिया नू 4-2 नाल हराया। इस जीत दे हीरो रहे स्ट्राइकर हैरी केन, जिन्होंने पहले हाफ विच 2 गोल किए जिन्हां विच एक पेनल्टी भी शामिल सी जिसका रीटेक करना पिया। क्रोएशिया ने पहले हाफ विच 2 बार बराबरी हासिल की पर दूजे हाफ विच इंग्लैंड ने मैच ते पूरा काबू कर लिया। जेकर क्रोएशियाई गोलकीपर ने कई शानदार बचाव ना किए होंगे तो इंग्लैंड होर भी गोल कर सकता सी। इस तो पहला ह्यूस्टन विच ग्रुप के दे अपने पहले मैच विच पोर्चुगल नू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने 1-1 दी बराबरी ते रोक लिया। पोर्चुगल दे स्टार खिडारी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लई एक निराशाजनक रात रही। उन्होंने पूरे 90 मिनट खेडे पर अपनी टीम नू जित नहीं दवा सके। एक होर अफ्रीकी देश खाना ने भी जश्न मनाया, जिसने टोरंटो विच ग्रुप एल दे रोमांचक मुकाबले विच पनामा नू 1-0 नाल हराया। दिन दे आखिरी मैच विच कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान नू 3-1 नाल हराया। हुण नज़र मारदे हां आस्ट्रेलिया दी राष्ट्रीय टीम सोक्रूज दीआं ताज़ा खबरां ते। सोक्रूज ने शनिवार नू मेज़बान अमरीका नाल होण वाले मुकाबले तो पहला कैलिफोर्निया दे ओकलैंड विच बंद दरवाजिया पिछे ट्रेनिंग सैशन कीता। आस्ट्रेलियाई टीम दा कहना है कि तुर्की विरुद्ध जित तो बाद ओह भरोसे नाल भरी हुई है अते अमरीका खिलाफ सिएटल विच होण वाले मैच लई बेसब्री नाल उडीक कर रही है। एह गल डिफेंडर काई ट्रिविन ने भी कही, जो मेजर लीग साकर विच न्यूयॉर्क सिटी एफसी लई खेडदे हन।
1: Well, obviously we've started so well now and we spoke about, you know, pushing on and continuing. We want to obviously do better than we've ever done before at a World Cup, and that'll mean, you know, getting another result against the US and pushing through the group stage. But I think there was lots of positives from the Turkey game and just improving on them. And yeah, like I said, trying to get a positive result again.
0: Australia te America vichkar e mukabla shanivar nu hovega ate SBS te svere 4 baje to live prasarit kita javega. ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਤਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ। SBS ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਹਰ ਪਲ SBS ਅਤੇ SBS ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੇਖੋ।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर. शुक्रवार 19 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज आपके साथ जो पूरे एक घंटे का साथ है उसमें कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो सब हो जिसकी आपको उम्मीद रहती है हमारे इस कार्यक्रम से. और आप पूरे समय हमारे साथ बने रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें, जो भी अच्छा बुरा लगे हमें आप बताते भी रहें. और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया के बारे में. भारत की रिपोर्ट तो होगी ही, इसके अलावा हम बात करेंगे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने एक महत्वपूर्ण दिन के बारे में जो है इस रविवार को. मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा दिन है. बस मुझे बताएं 0439799767 पर. और अभी पहले न्यूज़ फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 19 जून के लिए यह न्यूज़ फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. पर्थ के एक बच्चों के डॉक्टर पर 10 बच्चों के साथ यौन दुराचार का आरोप है और उन पर दर्जनों नए आरोप लगे हैं. चिया लियोंगसा पर्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट में 31 नए अपराधों के आरोप में पेश हुए जिसमें एक बच्चे के साथ यौन संपर्क बनाने का अपराध भी शामिल है. पुलिस का आरोप है कि ये अपराध 2022 और 2026 के बीच पर्थ के कई उपनगरों में हुए जिसमें वो हॉस्पिटल भी शामिल है जहां सौ काम करते हैं. एक चेतावनी कि अगर इस समाचार ने आपको या आपके किसी जानने वाले को कोई दिक्कत दी है तो 24 घंटे सपोर्ट 1800 रिस्पेक्ट पर 1-800-737-732 या 1800respect.org.au पर आपको सपोर्ट मिल सकता है. पाकिस्तान के एक फॉरेन अफेयर एनालिस्ट का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत से शायद कई लोगों की उम्मीद से अधिक मजबूत स्थिति में उभरा है. ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के बीच एक शुरुआती एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद आई है जिसमें प्रतिबंधों में राहत और तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क शामिल है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन होने के बाद कमर्शियल शिपिंग हॉर्मुज स्ट्रेट में वापस आने लगी है. पिछले 24 घंटों में शिपिंग डेटा से पता चलता है कि 3 सऊदी तेल टैंकर कुल मिलाकर 6 मिलियन बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहे थे और एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर इस रणनीतिक वाटरवे से सफलतापूर्वक गुजरा. ईरान का कहना है कि जहाज़ों को अभी भी अधिकारियों द्वारा तय किए गए रूट और शेड्यूल को फॉलो करना होगा जबकि समुद्री ट्रैफिक धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा है. NDTV के समाचार के अनुसार हॉर्मुज से नाकेबंदी के हटते ही 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी NLG लेकर आ रहा माल्टा के झंडे वाला सुपर टैंकर भारत गुजरात में बंदरगाह पर पहुंच गया है. युद्ध की वजह से ये जहाज लगभग 3.5 महीने तक फंसा रहा. अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते से वॉशिंगटन में दोनों तरफ की राजनीति के द्वारा आलोचना हो रही है. कानून बनाने वालों ने तेहरान को अरबों डॉलर दिए जाने और इसके इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या अर्थ हो सकता है इस पर चिंता जताई है. आलोचना करने वालों का कहना है कि ये डील मिडिल ईस्ट में ईरान का असर बढ़ा सकती है जबकि उसकी मिलिट्री क्षमताओं पर कोई खास असर नहीं डालेगी. ब्रिटिश लेबर राजनीतिक एंडी बर्नहम ने मेकरफील्ड उपचुनाव जीत लिया है जिससे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर दबाव बढ़ गया है. बर्नहम जीतकर पार्लियामेंट में वापस आ गए हैं और भविष्य में लीडरशिप चैलेंज के बारे में अटकलों को बल मिल गया है। मेलबर्न में एक प्राइमरी स्कूल के पास एक पार्क में दो लोगों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति पर हमला किया, जिसके 6 दिन बाद उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस का आरोप है कि यह हमला मेलबर्न के दक्षिण पूर्व में स्टैटर्ड रिजर्व नेरीवारन साउथ में हुआ था। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत में 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को सही ठहराया है। 21 जून को होने वाले नीट की दोबारा परीक्षा की वजह से केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sps.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब फीफा कप में 8वें दिन का लेखा जोखा आपके लिए लाए हैं नबील हसन।
2: मेक्सिको ने कोरिया रिपब्लिक को हराकर अगले राउंड में जगह बना ली है। वहीं कनाडा में एक गंभीर चोट की घटना भी हुई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 8वें दिन के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं नबील हसन। साउथ कोरिया के खिलाफ एस्टाडियो एक्रन में एक टाइट 1-0 जीत के साथ मेक्सिको ने ग्रुप ए में टॉप स्पॉट सिक्योर कर लिया है। एल3 यानी मेक्सिकन नेशनल फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अगले राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मेक्सिको के डिफेंसिव मिडफील्डर लुइस रोमो ने गोल किया, जो साउथ कोरियन गोलकीपर की एक बड़ी गलती के बाद आया। उसी ग्रुप में साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड कप ड्रीम्स को जिंदा रखा और आखिरी मोमेंट्स में चेकिया के खिलाफ 1-1 के स्कोर से ड्रॉ हासिल किया, जो एक लेट पेनल्टी के बदौलत हुआ। इससे पहले कनाडा ने वैंकूवर में खतर को 6-0 से हराया और अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत दर्ज की। साथ ही ये नॉर्थ अमेरिकन और कैरेबियन रीजन के मेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत भी रही। हालांकि इस जीत में एक चिंताजनक पल भी रहा, जब कैनेडियन मिडफील्डर इस्माइल कोहने को ब्रोकन लेग के कारण स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। स्विट्जरलैंड ने लॉस एंजलिस में बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 4-1 से हराया। इस मैच के सभी 5 गोल आखिरी 20 मिनट में आए। ग्रुप बी में कनाडा और स्विट्जरलैंड 4-4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं और दोनों टीमें 25 जून को आमने सामने होंगी। और अब नजर डालते हैं सॉकर रूस की ताज़ा खबरों पर। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और स्थिति साफ है। अगर सॉकर रूस होस्ट नेशन अमेरिका को हरा देते हैं तो वो अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। पूर्व अमेरिकन खिलाड़ी और जर्नलिस्ट ने अपनी टीम अमेरिका को पसंदीदा टीम बताया है, जिससे मैच को लेकर दबाव और बढ़ गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह अपने गेम पर फोकस कर रही है और अपनी एक बड़ी ताकत पर ध्यान दे रही है, डाइवर्सिटी। स्ट्राइकर अवेर मबील इसी सोच को दर्शाते हैं।
3: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in through a humanitarian visa. You know, so that's how I was able to go to Australia, and many others have their way of going to Australia and their reasons. So, you know, for me, it's a refugee week, and it's a week that, you know, I would like to say to anybody that is misplaced all over the world that, you know, we are with you, and we are in a world stage right now, in a big tournament. And just to tell you, everything is possible. So keep going.
2: कोच टोनी पोपोविच के पास अमेरिका के खिलाफ शनिवार 20 जून के मैच के लिए सभी खिलाड़ी उपलब्ध हैं। आप इसे SBS पर लाइव देख सकते हैं सुबह 4 बजे से। शनिवार को ही स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से होगा, ब्राजील खेलेगा हेती के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप डी में राइवल तुर्की का सामना पैराग्वे से होगा। आप सुन रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 8वें दिन का वर्ल्ड कप डेली अपडेट। मैं हूं नबील हसन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हर पल को SBS ऑन डिमांड पर जरूर देखें।

0: तो श्रोताओं, क्या आप फीफा कप को फॉलो कर रहे हैं? कल सोक्रूज का मैच है यूएस के साथ, आपका अंदाजा क्या है? मुझे अवश्य बताएं। मिलती हूँ इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
2: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
1: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार। SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें चैनल 33 पर SBS फूड, जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 2400 घंटे।
3: SBS Audio.
4: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
5: यही ज्यादा रिया। चुनबे हाल में।
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
3: sbs.com.au/audio।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने पूछा था कि रविवार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाता हुआ कौन सा दिन है, और क्या आप भी किसी तरह से उस दिन के साथ जुड़े हैं? आगे उसके बारे में बात तो करूंगी। आप समझ ही गए हैं ना कि वो कौन सा दिन है, बस आप मुझे बताइएगा। हमारी श्रोता हेमलता जी ने तो अपना सही जवाब लिख भेजा है, तो बस आप भी सोचिए और मुझे लिख भेजिए 04397997667 पर। और जानते हैं, आज का दिन यानी 19 जून का दिन भारत में मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे के। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको पढ़ने का शौक है? क्या पढ़ना पसंद करते हैं? कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं या फिर कुछ और तरह की किताबें? लिखिएगा इसके बारे में भी। और अभी भारत से हमारे संवाददाता विश्वरत्न के साथ ये रिपोर्ट।
12: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने के लिए हुए समझौते का भारत ने स्वागत किया है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के प्रति भारत ने अपनी वचनबद्धता भी दोहराई है। गुरुवार को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा,
13: We are not a party to the conflict and we would leave it to the parties to the conflict to decide how to arrive at arrangements to terminate the conflict, to end the conflict and to find a roadmap after that for a path forward. Now that we are at the beginning of such a path, if there are ways in which we can contribute through our engagement, whether it is with Iran or with Israel, we would be ready to do that. And those conversations are ongoing. I cannot preview or prejudge those at this point in time.
12: Slovakia aur France ka daura pura karke Pradhanmantri Modi Bharat laut rahe hain. Is daure ko videsh mantralay ne safal bataya hai. G7 बैठक के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात चर्चा के केंद्र में है। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते को जल्दी पूरा करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौता होने वाला है वह अपने अंतिम दौर में है। विक्रम मिश्री ने इस बारे में

0: ने जानकारी देते हुए कहा।
1: एक बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई दोनों लीडर्स के बीच में, और जो भी महत्वपूर्ण विषय दोनों लीडर्स के मन में थे वो उन्होंने एक दूसरे से साझा किए। और जैसा मैंने आपसे कहा, मीटिंग में दोनों लीडर्स ने जो इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच में, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, उसके ऊपर दोनों लीडर्स ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस एग्रीमेंट को जल्द से जल्द हमें आगे ले जाना चाहिए। और इसके चलते अगले हफ्ते जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर जेमिसन ग्रेयर, वो भारत की यात्रा पे आ रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर से मिलेंगे और इस बातचीत को आगे ले जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि पिछले 12 सालों में तेज आर्थिक प्रगति हुई है। इस दौरान देश की जीडीपी 2 गुनी हो गई है। गुरुवार को फ्रांस के पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
2: बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है। इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है।
0: अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये 12 साल सिर्फ उपलब्धियों के नहीं बल्कि भारत की आकांक्षा को नई बुलंदी देने का काल रहा है।
2: ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में बगावत हुआ और पार्टी के 2/3 लोकसभा सांसद अलग हो गए। अब यही कहानी महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। हालांकि यहां चुनाव अभी नहीं हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को व्हिप जारी होने के बाद भी ये सांसद पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए। पार्टी नेता संजय राउत ने अब इनके विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
3: हम उनको डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत काम करेंगे तो ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी, और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है।
0: उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा भी भाजपा कर रही है। 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी के 26-27 लोकसभा सांसद पार्टी से अलग हो सकते हैं, ऐसा दावा राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। समाजवादी पार्टी ने इसे महज अफवाह बताकर खारिज किया है। पार्टी नेता शिवपाल यादव ने पार्टी को एकजुट बताते हुए कहा,
4: झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी।
0: महाराष्ट्र की राजनीति में आगे भी हलचल बनी रहेगी। एनसीपी शरद पवार के सांसद भी टूट सकते हैं, ऐसी चर्चा जोरों पर है। ये बागी सांसद लोकसभा में सत्तारूढ़ एनडीए की ताकत बढ़ाने वाले हैं। राज्यसभा में भी एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसद के अलावा राज्यसभा के चुनाव

0: में भी एनडीए उम्मीदवार उम्मीद से अधिक सफलता पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट गंवाने के बाद कांग्रेस पार्टी को झारखंड में भी झटका लगा है। गुरुवार को हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की। दो सीटों के लिए हुए चुनाव में एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार आसानी से जीत गया। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
1: भारत की इस रिपोर्ट के बाद श्रोताओं आपको बताती चलूं कि नीफा में क्लोजिंग नाइट फिल्म बंदर के लिए पास जीते हैं हमारे श्रोता जफर और विक्रम जी ने, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है फिल्म आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और श्रोताओं आपको याद है ना कि आपने मुझे बताना है कि रविवार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना कौन सा दिन है, यानी किस के लिए ये दिन समर्पित है। और मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं। बस आप अपने संदेश भेजिए और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
2: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: सबसे अच्छा तरीका है SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें
2: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर
3: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर हमारा पेज लाइक करें SBS हिंदी फेसबुक पर भी है sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए sbs.com.au/hindi पर जाएं
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार श्रोताओं क्या कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आती है कि कुछ दुविधा भरे सवाल आ जाते हैं और समझ नहीं आता कि उसका सामना कैसे करें उस समय मन में बहुत से गाने भी याद आते होंगे कि कैसे उन दुविधाओं का सामना किया जाए कुछ तो करते ही होंगे तो चलिए आपके लिए कुछ एक ऐसा ही गाना चुना है दुविधा कि कैसे गाना ऐसी स्थिति में कि क्या सच में कहीं कोई नाराजगी हो जाती है

0: hits from home.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: तो याद ही होगी और कलाकार भी, क्यों ना आप मुझे लिख भेजें 04397997667 पर। और आइए अब चलते हैं क्षेत्रीय विक्टोरिया शेपर्टन में और मिलते हैं वहाँ बसे भारतीय मूल के समुदाय के साथ। ये मुलाकात आपके लिए करवा रही हैं हमारी सहयोगी नताशा कॉल।
3: मेलबर्न में लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित शेपर्टन भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन चुका है। विक्टोरिया के इस रीजनल एरिया में बसे शहर की आबादी वैसे तो लगभग 70,000 है और यहाँ अनेक प्रवासी परिवार अपने बेहतर भविष्य के सपनों को साकार करने में जुटे हैं। इनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। उम्मीद और उपलब्धियों की अनगिनत कहानियों के बीच एक ये भी सवाल उठता है कि आखिर शेपर्टन जैसे क्षेत्रीय शहर में जीवन कैसा है, क्या छोटे शहरों में बसना अपने साथ अलग तरह की चुनौतियां लेकर आता है और क्या ऐसे में समुदाय रेसिज्म या प्रवासन विरोधी भावनाओं के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने शेपर्टन में रहने वाले लोगों से बात की और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
4: हाय, मेरा नाम शिल्पा है। मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ बट मैं यहाँ पे शेपर्टन में 11 साल से रह रही हूँ। शेपर्टन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि 10-15 मिनट की दूरी पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपको बहुत देर ट्रैफिक में फंसे नहीं रहना पड़ता। हमने कई बार सोचा मेलबर्न वगैरह मूव करने के लिए लेकिन फ्रेंड्स बोलते थे कि उनको घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है इधर। शुरुआत में मैं अकेले आई थी तो मुझे बहुत ही वेलकमिंग लगा, बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत हेल्पफुल थे। अभी भी हमारे जैसे जैसे फ्रेंड्स और बढ़ते गए हमें तो सब अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक।
5: कोई एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स आपको देखने का मिला
6: शेपर्टन में? तो
4: नहीं, मुझे नहीं लगता। वर्क प्लेस में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हम भी बड़ी ओपन माइंडेडली जाते हैं, ऐसे उनसे रिलेट करते हैं, तो ऐसा कुछ हमें फील नहीं है।
5: शिल्पा, सबसे बड़ा चैलेंज शेपर्टन का क्या है?
4: हमारे लिए पर्सनल ये है कि हमारी फैमिली यहाँ पे नहीं है तो बच्चे के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा कुछ खास चैलेंजिंग और कुछ नहीं लगा।
5: तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करती
4: हैं? हम इंडिया जाते हैं रेगुलरली।
3: डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जो एनिमल साइंटिस्ट हैं अब शेपर्टन को अपना घर बना चुके हैं। वे कहते हैं उन्हें यहाँ रहना बेहद पसंद है।
7: मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। मैं शेपर्टन में रहना तो अभी पिछले 9 महीने से रह रहा हूँ, लेकिन शेपर्टन के पास ही एक डुकी कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी मेलबर्न का कैंपस है, जहाँ हम एग्रीकल्चर और ख़ास करके एनिमल साइंस की ट्रेनिंग और क्लासेस लेते हैं। वहाँ तो मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन रहता कैंपस में था, अभी पिछले 9 महीने से यहाँ शिफ्ट किया है। जैसे अगर आप नताशा जी गई होंगी सराउंडिंग में, आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेयरी है, जिसकी वजह से मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, और एग्रीकल्चर फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, तो और फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, वो सारी जितने भी इंडस्ट्री हैं वो शेपर्टन के आसपास हैं। और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे इमिग्रेशन का, चाहे वो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, जैसे मैं डेयरी की बात कर रहा था, बहुत सारे वेटरनेरियंस, क्योंकि लार्ज एनिमल प्रैक्टिशनर्स की बड़ी ज़रूरत रहती है और है अभी भी है, ऐसे स्किल्ड लोगों की बहुत ज़रूरत है रीजन में, और शेपर्टन एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे हमारा जीवी हेल्थ देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर्स और नर्सिस बहुत सारे आपको जो है वो

नेशनल लोग नज़र आएंगे, भारत के बहुत ज़्यादा भारत से भी हैं, तो वो लोग सब लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रीजन के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आई थिंक एज ए होल यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो होती है स्किल्ड लोगों की, टैलेंटेड लोगों की, और उनके लिए डजेंट मैटर कि कितना यू नो इमिग्रेशन पे कितना हल्ला करते हैं, वो ज़रूरत हमेशा रहेगी और वो है। और भारतीय तो आपको पता ही है सारे स्किल्ड लोग हैं, उन्होंने पहले भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया है, जो देश ऑस्ट्रेलिया ने तरक्की करी है उसमें उनका बहुत रोल रहा है, आगे भी रहेगा। तो आई डोंट थिंक, क्योंकि और मेहनती लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे चैलेंजेस है, बल्कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है रीजन। मैंने देखा है कि मैं यहाँ रहता नहीं था लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली आता था मेरी जॉब को लेकर के, मेरे काम को लेकर, और मैंने बहुत ग्रोथ देखा यहाँ पे, इतना ग्रोथ हुआ है, चाहे आप हाउसिंग सेक्टर देखें, हर चीज़ में यहाँ ग्रोथ हुआ है। सी ओबियसली जो रीजन है, अगर इमिग्रेशन के लिए चैलेंजेस रहते हैं रीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, और वो इसलिए हैं कि रीजन को ज़्यादा ज़रूरत है इमिग्रेंट्स की, चाहे वो लेबर है या दूसरे हमारे रिसर्च के लोग की ज़रूरत है, स्पेशली डेयरी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो रीजन को यस उनकी कमी ज़्यादा खलेगी और आगे भी खलती रहेगी, और आई थिंक ऑलरेडी वो जो इंडस्ट्री है वो फील कर रही है। तो लेकिन जो आई थिंक एट द मोमेंट जो चैलेंजेस जिनकी बात कर रहे हैं लोग, वो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, और वो ठीक है, प्लानिंग फ्यूचर की होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे बैलेंस बनाना है, एक बैलेंस क्यों

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: I found it really happy to be and comfortable to be in a regional area because we, I know that, you know, like we don't have DFO, we don't have Costco here, but apart from that, you know, we pretty much, we can access to anything in Shepparton. It is a good place to live here. I don't think there is any problem in Shepparton because it's a very, they always welcome the migrant community in Shepparton. I can proudly say that I'm part of Shepparton Malayali Association, where we have more than 900 individuals in our community, and we often once in every year we do the multicultural talent show, where we get involvement and engagement from other community, like Punjabi community, Nepali community, even Australian community and things like that. So it's a very welcoming environment, you know, like, so people are really likes to come to Shepparton area because of our welcoming migration.
2: Lekin kya Shepparton mein anti-immigration bhavna ka कोई असर देखने को मिल रहा है? विनय बताते हैं।
3: देखो यार, एक तो है हम शेपर्डन में हैं, शेपर्डन में तो मैं ऐसे कोई चीज़ अभी तक तो देखा नहीं, अगर मतलब इतना तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि लाइक इट वुड बी ना इंसाफी होगा जब मैं बोलूँ कि लाइक यार लाइक ये कम्युनिटी ऐसे मुझे ट्रीट कर रहा है, कि अभी तक तो नहीं हुआ।
2: और वहीं एक साल पहले आए मनोहर बताते हैं कि उनके अनुभव में एंटी इमिग्रेशन चर्चाएं ज्यादातर बड़े शहरों से जुड़ी हुई हैं। उनके अनुसार शेपर्टन में उन्होंने कभी भी किसी तरह के भेदभाव या लक्षित किए जाने का सामना नहीं करना पड़ा है।
4: My name is Manohar and I've been here for more than 1 year. मेरे किधर भी काम करते हैं उधर भी सारी ओसी के साथ काम करते हैं, बट वो भी ठीक है, कभी भी हमको वैसे देखा नहीं, बहुत हेल्पिंग होता है, बट कभी कभी मैं सोच रहा हूँ मेट्रो एरिया पे कभी कभी थोड़े जगह पे होते हैं, पर्सन का पर्सपेक्टिव पे होता है, मेरे को नहीं कुछ नहीं वैसे नहीं हुआ, लाइक एंटीमिग्रेशन वैसे कुछ नहीं हुआ था। वो अच्छे से बात करते हैं, सारे अच्छे होते हैं, वैसे कुछ पार्शियलिटी कुछ नहीं होते हैं, लाइक चीज़ में लाइक सारी लाइक इक्वलिटी होते हैं, सब कुछ इंक्लूजन प्रैक्टिसेस भी होते हैं, जो ठीक है जब तक है, मैंने कभी भी नहीं फेस नहीं किया।
2: इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए। आपको बता दें, इस पॉडकास्ट में दिए गए विचार पूरी तरह से साक्षात्कर्ताओं के निजी हैं। हम इनसे ना तो सहमत हैं और ना ही असहमत।
5: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे शेपर्टन में बसे भारतीय मूल के समुदाय के साथ में हमारी ये बातचीत। तो आपको इसके बारे में कितनी जानकारी थी, क्या आप सोचते हैं, अवश्य लिखिएगा। और इस बीच में हमारी श्रोता विद्या जी ने तो बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा है कि रविवार का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। इसके बारे में आगे बात तो करूंगी, तो आप भी बताएं कि क्या खास है रविवार के दिन पर, और क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं, कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं या कुछ और तरह की किताबें, इस सब के बारे में मुझे बताइए। और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
6: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
7: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
8: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music.

0: Don't miss Bhangra Hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
1: SBS Food के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए. SBS Food पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें. साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ. sbs.com.au/food पर जाएं.
2: SBS Kickoff.
3: A new music station celebrating football anthems from around the world.
4: It's time for Africa.
2: It's live now.
3: On DAB Radio, the SBS Audio app.
4: We got the game.
2: Online and SBS On Demand.
5: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें. ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है.
6: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, इस बीच में हमारे श्रोता पीयूष जी ने भी सही जवाब लिख भेजा है कि रविवार के दिन का क्या महत्व है. आते हुए आने वाले रविवार के दिन का, यूं तो रविवार हर एक ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये जो रविवार आ रहा है ये कुछ खास महत्वपूर्ण है. और पीयूष जी, मैंने आपकी पसंद भी नोट कर ली है, आते किसी कार्यक्रम में अवश्य शामिल करूँगी. अब रविवार की जो बात मैं कर रही हूँ उसकी बात तो हम आगे करते ही हैं. कुछ ये कहना चाहूँगी कि ना कोई भाषा, ना कोई धर्म, ना सीमाएं इसकी रेखा है. हर देश, हर मानव के लिए योग तो जीवन की रेखा है. शांति, प्रेम और आत्मविकास हर पथ का आगाज है योग. सूर्य की पहली किरणों में जब प्रकृति मुस्कुराती है, उस मौन सुबह की वाणी में हर दिन को पावन कर दे, ऐसा दिव्य प्रकाश है योग. तो बस इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं.

0: SBS हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भारतीय ज्ञान की वो विरासत है जिसकी जड़ें भारतीय पौराणिक युग से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि विदित ही है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी, जब 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इस विषय पर बात की और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, ये क्या है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति, जिन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि पर लगातार काम करते हुए कई ग्रंथों का काव्यात्मक और व्याख्यात्मक अनुवाद किया है। तो वो बताती हैं।
1: अनीता जी, योग शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दर्शन और एक फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है और योग वास्तव में जीवन के रूपांतरण का ज्ञान है, जो वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ये वास्तव में प्राण से प्राणाधार तक की यात्रा है, जो देह से तो आरंभ होती है लेकिन देहांतर तक जाती है। और इसकी जो मान्यता है वो वैज्ञानिक रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में इसलिए स्वीकार की गई है कि जो विज्ञान का और हमारे देह के तंत्र हैं उनका जो वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया, हमारा स्वभाव है कि वैज्ञानिक ने कहा तो हमने माना। तो इसमें हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, इसे पिंड और ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में हो रहा वो हमारे अंदर है, हम पहचाने नहीं अपनी शक्ति को। तो इसमें 72,72,10,200 नाड़ियां हैं जिनका शोधन केवल योग से, योग से अर्थात प्राणायाम से होता है। इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने माना, आज ये है युग की, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचाना जाता है।
0: जी, ये तो युगों युगों से

0: हमारे ज्ञान का भंडार था, ये शुरू कैसे हुआ था?
1: ये जब हम बीज रूप में जाएं, जहां से बीज ये अंकुरित हुआ है,
0: जी,
1: तो सबसे पहले हमें भारत के 6 दर्शनों पे जाना पड़ेगा। हमारे जो 6 दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन से पातंजलि योग के जो सूत्र हैं वो मिले हुए हैं। ये ऋषि पातंजलि ने लिखा और सांख्य दर्शन को ऋषि कपिल ने लिखा था। तो उसमें ये जो दिया गया है सूत्र, वो युगों युगों अंतर पहले से हैं, लेकिन बीज की भौतिकता में हम इसे नकारते चले गए। और इसमें जो है, इसलिए उन्होंने माना कि हमारा जो इसमें पातंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग दिया हुआ है। इसमें अभी मैं योग दर्शन का छोटा सा परिचय दूं कि योग दर्शन जीव के ये जो पंचमय कोश हैं, ये 5 हमारे कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय कोशों के गूढ़ मर्म और उनमें छुपी हुई शक्तियों को उजागर करता हुआ देह के सुप्त बिंदुओं को जागृत करता है, और जागृत करता हुआ हमें देह से विदेह की ओर उन्मुख करता हुआ आनंदमय कोश में प्रवेश कराने का विज्ञान, इतना गहरा विज्ञान है। मतलब ये बात करते हुए भी सिहरन होने लगती है इसकी, कि क्या था जिसका हम केवल सांस लेना आना जाना सोचते हैं और यंत्रवत करते रहे, जैसे हम इसके लिए प्रोग्रामड थे, बस तो होती रही सांस, लेकिन हर सांस में प्राण है और प्राण है प्राणाधार है, कितना विज्ञान। इसको जब उजागर हुआ तो लोगों ने इसकी मान्यता मानी। और फिर दूसरी बात है कि साधना जो है वो मानिए अनीता जी, साधना तो देह में ही रहकर होती है ना, तो साधना देह में ही रहकर होती है, विदेह अंतरात्मा साधना नहीं कर सकता, इसीलिए देह की आत्मा, देह जो है वही हमारी उन्नति का साधन है। अतः देह का स्वस्थ, संयमी और स्वच्छ रखना योग की अंग है
0: जी।
1: सच मानिए तो शरीर कोई है नहीं, श्रेय पाने का साधन है। इसलिए बिखराव तो तब आता है
0: जी,
1: जब अनीता जी हम देह को ही सर्वस्व मान लेते हैं
0: जी। तो एक बिल्कुल ही सरल शब्दों में अगर इसको समझना चाहे तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो एक स्वस्थ तन है उसके अंदर जो एक स्वस्थ मन है और उसके अंदर शुभ और स्वस्थ विचार हों, इस क्रिया को पाने की जो साधना है वही योग दर्शन का मुख्य ज्ञान है, ऐसे कह सकते हैं।
1: या बिल्कुल यही आपने सार निकाल दिया, धन्यवाद इसके लिए। तो ये विशेष रूप से योग दर्शन की जो पातंजलि योग दर्शन लिखा गया है, ये वस्तुतः गणितीय भाषा में लिखा गया है। गणितीय भाषा का अर्थ है जैसे 2 and 2 4 होते हैं, या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, बिल्कुल इस तरह है। ये गणितीय भाषा में लिखा गया है, इसको सूक्त इसीलिए बोलते हैं। इसके जो 2 सूक्त हैं शुरू के लेते हैं, उसमें आप देखिए कि वो 2 सूक्त का ही विस्तार पूरी पातंजलि योग दर्शन में। एक है अथ योगा अनुशासनम, दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग में अगर तुम इस यात्रा में प्रविष्ट होते हो तो तुम्हें अनुशासन और नियमों से बद्ध होकर ही चलना पड़ेगा। उसमें अष्टांग योग दिया। अब ये तन को स्वस्थ करने की बात हुई, उसके बाद मन को स्वस्थ करने की बात होती है। मन के बिखराव को समेटने के लिए दूसरा सूक्त है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो मन की एकाग्रता पर ध्यान देना यहाँ बहुत आवश्यक है, वो सब विकारों से बचाता है। और चूंकि ये संस्कृत में है, इसकी जो थोड़ा सा गुड़ है, तो लोगों की जन सामान्य तक इसकी एक रस्ता नहीं जाती। उसके लिए ईश्वर की कृपा से मैंने ये पूरे पातंजलि योग दर्शन को काव्य में अनुवादित किया है, चौपाई छंद में। उसका एक छंद मैं आपको सुनाती हूँ कि जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्ति अन सकल चपलता, मन संयम और चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। इस तरह पूरे काव्य पातंजलि योग दर्शन का अनुवाद किया है।
0: मृदुल जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने इतने सरल शब्दों में योग के बारे में हमें ये जानकारी दी।
1: धन्यवाद अनीता जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे SBS के मंच पर बुलाया। और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व इसको मना रहा है, बहुत बड़ी बात है यह हमारे भारतीय दर्शन के लिए और योग के मार्ग पर चलना।

0: आज कितना जरूरी भी हो गया है और सब इसकी महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि पूरे विश्व में ये तन और मन को और विचारों को स्वस्थ करने की प्रक्रिया का और अधिक गहराई से सम्मान किया जाए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, योग के बारे में मृदुल कीर्ति द्वारा दी गई ये जानकारी, ये विचार उनके अपने हैं। SBS ना तो उससे सहमत है और ना ही असहमत।

श्रोताओं, चलते चलते कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खोल कर जियो। सांस लेना सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं, ये जीवन को महसूस करने का तरीका है। अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान कर बस अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। और आपसे अगली मुलाकात तक के लिए अनीता बरार का नमस्कार। आपको छोड़े जा रही हूँ इसी गाने के साथ।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: लो, साला के संग ले लो, ससुरे के संग ले लो, सास के संग ले लो, अपनों के संग पराए के संग खासम खास की ले लो, इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना, मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना, जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन
1: थप्पड़ मारो।

काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सरा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेतों की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हम चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सक जमीन को फिर से नरम।

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छिपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहा, होठों पे जिसके लिपटा जहा, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहा। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली।

कहां से देखता है, मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा, मैंने तय किया गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय।

बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है कि या गलत को भी सही तरह से

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: The only party playlist you need. Hey party people, let's go! Desi Dance Party on SBS South Asian.

बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो। बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian, your news from here and hits.